0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वार्ड कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: पैसा तथा पर्स भेटिएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 जमरा पारी मेन्थादेखि समितिपुर जाने बाटोमा मेरीगोल्ड स्कूलको बसमा विद्यार्थी पुर्याउन जाने क्रममा केही दिन अघि बेलुका 4 बजेतिर कालो पर्स, औषधि र केही पैसा भेटिएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले लोकबहादुर सारू मगरको मोबाइल नम्बर 97 44 28 72 वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा सम्पर्क गरी बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ। पैसा दावी गर्ने व्यक्तिले पर्समा रहेको जम्मा रकम भन्न सक्नुपर्छ।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
4: औसी प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-017-10-672।
8: स्वास्थ्यका लागि पानी
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
1: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
0: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा र थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, सञ्चालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811638887।
6: हेलो बहिनी, कता हो? तिमीलाई थाहा छ कि नै, सीजी कम्पनीको वाई वाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी ₹560 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
0: मैले त एक पेटी चाउचाउ ₹600 किने।
6: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा ₹15 चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै ₹25 क्लासिक चाउचाउ र ₹35 चाउचाउ ₹2500 आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
0: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली, सञ्चालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 9848404241।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस टाटिन गतिलो ठाव से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ान लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का अनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलतमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै दुखदुख हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 10 गते 17 गते 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला टिकापुर अस्पताल टिकापुर के लाली
4: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
6: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600071024 ओ 98046777417
7: उपभोक्ता वर्गमा टीकापुर नगरपालिकाको अनुरोध आफूलाई आवश्यक औषधि खाद्यान्न पेय पदार्थ र अन्य सामानहरू खरिद गर्दा उपभोग्य मिति मूल्य सूची लेबल आदि हेरेर मात्र खरिद गरौं
8: आफूले खरिद गर्न लागेको सामानको उत्पादन भण्डारण वा बिक्री स्थलमा आवश्यक सरसफाई छ छैन हेरेर मात्र खरिद गरौं
7: जोखेर लिनुपर्ने सामानहरू खरिद गर्नु अघि ढक तराजुको अवस्था ठिक छ छैन हेरौं
8: वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल बिजक लिने बानी बसालौं
7: सामानको उपभोग्य अवधि सकिएको भए वा पानीले भिजेको प्याकिङ सामानको प्याकेट फुटेको ओसिएको वा गुणस्तरहीन भए त्यस्तो सामान खरिद नगरौं
8: अखाद्य रङ वा मापदण्ड विपरीतका वस्तुहरूको मिसावट भएका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू खरिद नगरौं
7: लेबल नभएको वा लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र वस्तुको ब्याच नम्बर तौल अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य उल्लेख नभएको प्याकिङ सामानहरू खरिद नगरौं
8: साथै उत्पादन मिति उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट भएको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु समेत प्रयोग नगरौ
7: आफ्नो इच्छा अनुसार रोजेर माल सामान वा सेवा खरिद गर्न पाउने खरिद गर्दा मूल्यमा मोल मोलाई गर्न पाउने र आफूले खरिद गरेको सामानमा कुनै त्रुटि भए तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो
8: खरिद गरेको माल सामान र सेवाको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य वा जीवधनमा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित विक्रेताबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने उपभोक्ताको अधिकार हो।
7: उपभोक्ता अधिकारको बारेमा आफू पनि सचेत बनाऊ र अरूलाई पनि सचेत बनाऊ।
8: कुनै वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव वा उपभोक्ता हित विपरीतका अन्य कुनै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू भए गरेको थाहा पाएमा तुरन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि वा टिकापुर नगरपालिकाको फोन नम्बर 091-560-384, 091-560-118 र उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखाको मोबाइल नम्बर 98-48-43-35-83 जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ।
7: बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, टिकापुर नगरपालिका।

0: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
1: दन्त रोग सेवा,
0: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा,
1: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार,
1: र सिटी स्क्यान सेवा
0: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा,
1: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलोजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पारासिटोलॉजी, सेरोलॉजी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल वीडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पताल का अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
0: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा,
1: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
0: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
1: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
0: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
1: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
0: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरलो से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आप बा का सर सफाई कह दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 98 6 56 92 0 26

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उग्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रोमा फेर सुन्तिर हलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से रसुवा के सुरुङमा काम करके कैलाली ओबर्दिया के 47 नागरिक खुकरन के पारिश्रमिक वितरण वड़ा सञ्जालो थारू व्यापार संघ से फिर राहत वितरण असोज 8 गते से लैके 12 गते सम्म नेपालमा भारी पानी पर्न प्रक्षेपण कोन ठाउँमा कतरा पानी परसेक्न कहना एकिन नै हुसेकल मौसमविद के कहाई टिकापुरमा विपन्न बाल बालिका हुक्रनके संरक्षणमा सरकारवाला हुक्रनकी भूमिका विषय छलफल व अन्तर्क्रिया हो। बौनियामा सन्त अहंकारी मण्डल नेपाल से 37औं वार्षिक साधन सभा गराए। रसुवा स्थित के जलविद्युत आयोजनामा श्रम गर्न गइल कैलालियो बर्दिया के नागरिक हुक्रन के पारिश्रमिक वितरण करगिलवा कैलालियो बर्दिया के 47 जहन के पारिश्रमिक वहां हुक्रन काम में लैजैना तुलाराम चौधरी वितरण करल के हैं। रकम पैना समेत में 14 जहन में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से लौटल कामदार बाटे कल से 33 जने बेपत्ता रहल हुक्रन टीकापुर में 25 औसतक जानकीमा चारो बर्दिया के गेरुवा गाउँपालिका के चार जाने रहल बाटै रसुवा के सुरुङमा काम करके टिकापुर के नागरिक हुक्रन के पारिश्रमिक वितरण करगिलबा रसुवा के भोटेको सीमा बार पाछे टिकापुर जानकी बर्दिया के कुछ नागरिक घर लौटल बाटै कलसे कुछ अभिन फे बेपत्ता रहलक वहाँकरण के पारिश्रमिक वहाँकरण काममा लैजेना ठेकेदार तुलाराम चौधरी कम्पनी मनसे बुझ के लान के टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 के वार्डाध्यक्ष मोहन बिका के रोहबारमा पीड़ित परिवार हुक्रन बुझागिलवा तुलाराम से टिकापुर बर्दिया के 47 जने कामदार हुक्रन के पारिश्रमिक 18,76,573 रूपया आपन खातामा कम्पनी से जम्मा गर्देलो कम काम कर हुक्रन फे महिनाभरि पारिश्रमिक देलक बुझाइल बटेले बाटै कम्पनी से कामदार हुक्रन के पुरान पारिश्रमिक भदौ महीना के 10 गते समकेल काम करलक रलसे फेन पूरे महीना के पारिश्रमिक पठाइलवा टीकापुर नगर पालिका वार्ड नम्बर 1 के वार्डाध्यक्ष मोहन बिका अब्बा कामदार हुक्रन के पारिश्रमिक केल समेत उपलब्ध हुइलो बारमा हेराइल हुक्रन के खोजी काम हुइते रहक समेत जानकारी कराइल बाटै हो सास या लास के खोजी हुइते रहक राहत तथा क्षतिपूर्ति के प्रक्रिया सरकार से करती रहलबा वाड़ा अध्यक्ष विकास से ई विपत्ति में अपना हुक्रन संभाल के धरना हो परिवार है समरना अनुरोध करती स्थानीय सरकार अपन नागरिक हुक्रन की पीड़ा में साथ रहल बतोले बाटे बार पासे टीकापुर नगर पालिका के 2500 जाने की गांव पालिका के चार जाने आबिन फे संपर्क विहीन बाटे। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 के टोल विकास संस्था वाड़ा सञ्जाल भोटेकोसी बार प्रभावित बेपत्ता रलक परिवार हुक्रन आर्थिक सहयोग प्रदान करलबा वाड़ा सञ्जाल के अध्यक्ष गीता कुवर के सहित जगतमा राहत संकलन मन से 80,161 रूपया बार से बेपत्ता रलक परिवार हुक्रन सहयोग करल के हो। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 के वाड़ा अध्यक्ष लालवीर चौधरी मार्फत टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 समितिपुर के बरघर अखिल थारू हे हस्तांतरण करल के हो। ई रकम नगरपालिका भीतर के रसुवा के बार मा बेपत्ता रलक 25 परिवार हुक्रन दामसाईक हिसाब से वितरण करगिल वाड़ा अध्यक्ष चौधरी बटोले बाटे वहां विपत्ति के समय में वाड़ा संजाल से करल एकदम महत्वपूर्ण काम बटैती स्थानीय सरकार फे समेत आवश्यक सहयोग करना प्रतिबद्धता व्यक्त करल बाटे। वाड़ा अध्यक्ष चौधरी के अनुसार वाड़ा के समेत टोल 15 टोल विकास संस्था से संकलन हुलक रकम हस्तांतरण कर गिले हो। थारू व्यापार संघ टीकापुर रसुआ बार प्रभावित परिवार हुक्तन राहत वितरण करलवा टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर एक के 20 जाने परिवार हुक्रन 30,000 राहत वितरण करगिले खो रसुआ के काम गैल आवसम संपर्क में नियलक 20 धन परिवार हुक्रन जनही 1,500 के दर से राहत वितरण करगिल थारू व्यापार संघ के अध्यक्ष गोपाल चौधरी जानकारी दिले बाटे घर में कमैना मन संपर्क विहीन हुई पाछे वहां उकरण के कम काम रलसफेन राहत पुगे गये कुछ व्यापारी उकरण से रकम संकलन करके राहत वितरण करलो आगामी दिन में फिर सहयोग रहना अध्यक्ष चौधरी बतुले बाटे खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीका प्रफम
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो घर में सक न सके सब काम कर काम कर विदेश जानूनी के नगर्नी के जस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
0: हाल देशभर मनसूनी वायु के साथे पश्चिमी वायु के फे आंशिक प्रभाव रहल बा मनसून के न्यूनचापीय रेखा बरसर्दन स्थान के दक्षिण ओर रहल बा हाल उत्तर समेत अंडमान सागर आसपास के क्षेत्र में न्यूनचापीय क्षेत्र बनल देख गिल बा कलसे उप प्रणाली आगामी दिन में थप बलगरबंती पश्चिम उत्तर दिशा लंग समेत सर्ती रहल देख पड़ल बा हाल कोसी और बागमती प्रदेश के सक्कू भूभाग में गंडकी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साथ ही लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय भूभाग में साधारणतया मौसम बदलनबाकल से मध्य प्रदेश में आंशिक मौसम बदलनबा देश के बाकी भूभाग में मौसम मुख्यतया सफा रहनबा कोसी और बागमती प्रदेश के कम स्थान के साथ गंडकी लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के एक दुई स्थान में हल्का से लेके मध्यम वर्षा होती रहल बा आज दोपहर के कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान तथा लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित मध्यम खाल के वर्षा हिमपात की संभावना बा मध्य प्रदेश तथा कोसी और बागमती प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान गंडकी उसका लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में एक दो स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्ने संभावना बा कोशी बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी पानी पर सकने संभावना बा असोज 8 गति से लेके देश के तमाम स्थान में भारी वर्षा होना आकलन करगिल बा बालपन के रक्षा भविष्य के सुरक्षा कहना नारा के साथ कैलाली के टीकापुर में विभिन्न बाल बालिका हुकरण के संरक्षण में सरकार वाला हुकरण की भूमिका विषय छलफल तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम में बाल क्लब बाल संजाल के पदाधिकारी स्थानीय पालिका टीकापुर भजनी नगरपालिका जानकी और जोशीपुर गांवपालिका के स्थानीय पालिका के विपद व्यवस्थापन समिति के पदाधिकारी महिला बाल बालिका शाखा विपद शाखा के कर्मचारी शिक्षक तथा सरकार वाला हुक्रन सहभागिता जनाए कार्यक्रम में सामुदायिक विकास केन्द्र दोती सीडीसीके बाल अधिकार संयोजक एकराज बडु विपद के बेलामा बाल बालिका हुक्रण के तमाम खालके जोखिममा पर सक्ना रलकोर्से बाल बालिका हुक्रण के सुरक्षा और पुनस्थापना कसी कर सकजाई कहना कार्यक्रम करगिलक बटोलेबाट वहाँ सुदूरपश्चिम के समेत 18 वर्ष तरक बाल बालिका हुक्रण के स्थिति था पैनकलाक प्रदेश सरकार संगे समन्वय करके बाल बालिका हुक्रण के स्थिति पत्रा प्रकाशित करते रलक जानकारी करेबाट प्रदेश प्रहरी कार्यालय के तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 2081-82 में सुदूरपश्चिम में विपद के कारण से 17 जने बाल बालिका हुक्रण के मौत हुई बाकलसे 19 जने बाल बालिका घायल हुई और 2 जने बेपत्ता रहल बताए गए बा नेपाल अडकेर सोसाइटी कैलाली के सभापति लोकराज जोशी विपद व्यवस्थापन के लक्ष्य संगे कानून और नीतिगत व्यवस्था तैयार रहल बतैती विपद व्यवस्थापन में राहत दैके रकम दैके केल नहीं हुई रलकोर से विपद व्यवस्थापन जोखिम हस्तांतरण समेत करना हुईना रलकोर से यमुना काम कर पर्ना बटोलेबाट वहां गैर प्राकृतिक को समेत प्राकृतिक विपद से जोखिम निम्तेन रलकोर से विद्यालय में रलक प्रकोप पहचान करके न्यूनीकरण के काम कर पर्ना में जोर देबाट जोशी के अनुसार विपद के कारण से विगत 10 वर्ष में 14,569 मनईन के मौत हुई जनाइले बाट भेरी साहित्य समाज कैलाली जिला के शाखा के टिकापुर में संपन्न दोसरा जिला अधिवेशन से दुर्गा प्रसाद भंडारी की अध्यक्षता में 9 सदस्य लाव कार्य समिति चयन करलबा उस समिति के उपाध्यक्ष में कांति प्रसाद केवाली सचिव में गौरी कुमारी जैसी सह सचिव में कमल प्रसाद भाट और कोषाध्यक्ष में नयन सिंह ओड रहल बटागिलबा करके सदस्य में अमित कुमार चौधरी मणिराम सुनार शांति काफले टिबिलसेना ओ रमेश बादी रहलबाट निर्वाचित कार्य समिति है संस्था के केन्द्रीय सलाहकार सदस्य एवं अध्यक्ष मंडल के संयोजक डॉ हरिप्रसाद टिबिलसेना से शपथ ग्रहण करायलबाट नवनिर्वाचित कार्य समिति है समाज के केन्द्रीय सलाहकार टिबिलसेना अध्यक्ष बस्नेत लगायत की से शुभकामना तथा बढ़ाई देहल रह से लाव निर्वाचित अध्यक्ष भंडारी समिति की ओर से प्रतिबद्धता व्यक्त कर खोजखर में एक घड़ी विश्राम पाठक फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो दंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
8: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को धारा जनान का लागि आवेदन दिने बारे को सूचना टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वार्ड नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन यही मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धारा जडानका लागि आवेदन दिन अनुरोध छ याद राख्नुहोला, पुष एक गते पछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन। थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 091-561-449 मा सम्पर्क गर्नुहोला। टिकापुर साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था।
9: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। संघीय सांसद के दोनों सदन के बैठक आज बैठे बा। दोपहर के एक बजे सिंहदरबार में बैठना। प्रतिनिधि सभा के बैठक में डोल प्रसाद अर्याल से राष्ट्रीय ताकि राष्ट्रपति के कार्यालय से प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी पत्र के ब्यौरा पढ़ के सुनेना कार्यक्रम रहल बा। उसके महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीताबादी से बाल बालिका संबंधी पहल संशोधन विधेयक 2083 दफावार छलफल के बाद संबंधित समिति में पठाई कहना प्रस्ताव प्रस्तुत कर संभावित कार्यसूची रहलवा। उसको बैठक में प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री बालेन्द्र शाह के ओर से कानून न्याय तथा संसदीय समेत मामिला मंत्री सविता गौतम राष्ट्रीय सेवा दल विधेयक 2083 में पारित करना प्रस्ताव प्रस्तुत होने कहलवा। उस करके 1:15 बैठना राष्ट्रीय सभा के बैठक में कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री समेत गीता चौधरी से मंत्रालय संगे संबंधित मौखिक प्रश्नोत्तर देना कार्यक्रम रहलवा। उस बैठक में कृषि तथा पर्यावरण समेत मंत्री गीता चौधरी से संक्रमण के कारण पशु रोग विधेयक 2083 पारित करना प्रस्ताव कार्यसूची रहलवा। उस के आज कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पूर्वाधार विकास समिति के बैठक बैठना बा। ओ कैलाली के बर्दगोरे गांवपालिका दुई सड़क पूर्व उनियामा संत निरंकारी मण्डल नेपाल के 37 वार्षिक साधारण सभा हुई बा। 37 वार्षिक साधारण सभा के केन्द्रीय अध्यक्ष नरबहादुर राउल के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में बर्दगोरे गांवपालिका के अध्यक्ष कर्णबहादुर कुंवर प्रमुख अतिथि रहल रहे। कार्यक्रम में बर्दगोरे गांवपालिका दुई के वाड़ाध्यक्ष गोविंद बिख वाड़ा नम्बर 1 के अध्यक्ष मिथुन गौतम सशस्त्र प्रहरी बल बौनिया के डीएसपी विश्वनाथ पोखरे लगायत की उपस्थिति रह। कार्यक्रम में संत निरंकारी मण्डल नेपाल के केन्द्रीय सचिव अनिल महर्जन से वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करल है। केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाठक सेफे आर्थिक प्रतिवेदन तथा आगामी आर्थिक वर्ष के अनुमानित बजेट प्रस्तुत करल है। केन्द्रीय सदस्य देवराज रिमाल से स्वागत मंतव्य व्यक्त करल है। कलश कार्यक्रम के संचालन केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव नरबहादुर विश्वकर्मा करल रहे। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। रसुआ के सुरुंग में काम करके कैलालियो बर्दिया के 47 नागरिक उपकरण के पारिश्रमिक वितरण वाड़ा संजालो थारू व्यापार संघ से राहत वितरण। असोज 8 गते से लेकर 12 गते सम्म नेपाल में भारी वर्षा के प्रक्षेपण कौन ठाव में कतरा पानी पड़ी कहना भर आकलन हुई नई सकल मौसम बीते। टीकापुरमा विपन्न बाल बालिका हुकरण के संरक्षणमा सरकारवाला हुकरण के भूमिका विषय छलफल अन्तरक्रिया हो। बौनियामा संत निरंकारी मण्डल नेपाल के 37 वार्षिक साधन सभा ओराइल। लेखा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी। आबे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते।

0: म आफ्नो वैराग्य गाउँछु वैसाथ बनाउँले
1: काठे सागो चुनक चुनक जुत्ता भड्कुनाले मेरा ताई।

0: ना बादल आकाश आउँदो चट्ट्याङ चुट्टुङ झरी मेरा जै था दुख कहीं नहीं सारा त्यस्तै भरी
1: आधार स्वर्ग खम्पानी छ आधार स्वर्ग विदु मैले बाँच्ने

0: मुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटा का आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागि विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइने का साथ ही थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
4: संचालक आरती चौधरी संपर्क नंबर 98624 70483।

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह के बैठक सबको रेडियो प्रेमी मेघर श्रोता संग्रह अपन स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहूमा मिशन और मिनके अब टेक में बैठ के साथ देते बाबू रत्नापुर मगर संघारी कृष्ण बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसमें बाटू जे जहां हुई भी कार्यक्रम में चाहिए सहभागी जनैवी का नाम अर्जी करना चाहता हूँ संगारे हमारे भदौ महीना पे और सकली अब भदौ महीना के हमरे अब असोज महीना लागिल असोज महीना के आज पांच गते हो गए हेरी ना सरसर सरसर समय बीती बा हेरी असोज महीना के पांच गते के दिन आज अपने संगे बटी हमारे सरसर मुख समय चल दीवाई अब बरकत दशिया पे सरसर सरसर आई दीवाई हेरी अब कुछ दिन में हमरे बरकत दशिया है फिर स्वागत करने नहीं बाटी का नाम कहना चाहम और हर्ष उल्लास के साथ सबको जाने अपने दसई दूर दूर से बाहर से विदेश से या अपन देश से बाहर लगे छिमेकी देश से या अपने देश में स्वदेश में रहल हुई भी यहां वहां देश के कोनवा में या कोई भी ठाव में अंते हुई भी अपन घर से बाहर हुई भी तो फिर दसई में आईम कही के सोच बनाई हुई भी और वो तैयारी करती हुई भी और देखिये दसियां फिर लग गई थी बात मारे से मैं कहती बात हूँ और अपने उनके फिर गृहिणी दीदी बहनों के फिर दसई तैयारी करती हुई भी कोई मच्छी मारत हुई भी मच्छी की पकली सुखवाई थी भी शायद कोई चाहे गांव घर में चाहे मतलब खैना परिकार बनेना चलाओबा जस्ता पुरखा हूं के जैसे तमाम चीज झोर बनाईना वस्ते के अपन अनाज के मतलब सुईना चलन बावई एक पानी दुई पानी ऐसे नहीं चाहिए तैयारी हमारे थारो समुदाय में करते हैं कहे कि हमारे संस्कृति हो ये चीज हमारे देवी देवता हमकन चाहत और वो चीज हमन बनाही पड़ना फैन जरूरी रहत और नया धान के ढिकरी खाना यानी कि नया धान के चाउर के ढिकरी खाना फैन हमार चलाव हो दसई में हमे ढिकरी लावा चाउर की बना के फैन खाई थी तमारे ओकलक फैन अपने तैयारी करती भी और जे जहां रहे थे फिर कार्यक्रम में सुन के साथ देवी आज हमे अपने हुकन संगे मैं गप करब मैं कुछ दिन अपने हुकन संगे से कुछ दूर गिल रहूं तब मारे से भी अपने हुकन संगे मैं भेट नहीं हुई पाइन ढेर दिन पास बैठू बाबा आज हम निशाना नहीं लगा अपने हुकन के संगे गप करब बात बटवाब का करती बाटी कोहर बाटी आज बात बटवाई के कार्यक्रम में सहभागी जन शून्य 91 5 61 255 के लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जनाए आई कार्यक्रम के शुरूआत में एक ठोर रमाइलो गीत जोड़ब गीत के पास में नहीं बाटो अपने हुकन के चाहे रमाइलो गीत के पास में आईम डायल चाहे करते 91 5 61 255 लाइन खुलेगा।

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत जोडले आफ्नो कनकलक कार्यक्रममा बाटोमा मिशन और निकै चाहिँ साथ धेरै बाबु रत्नापुरमा गर यही हो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत आफ्नो ग्राम सुन्न सकिन आफ्नो जानकारी कतिबाट तपाईँले हामी चाहिँ डायल गरेको पर्ना थियो आजकै दिन हामीसँगै रमाइलो गफ गरेको यानि कि बात बटवाएको ढेर समय पाछे आफ्नो गनको सँगैमा आफ्नो गन आइपुग्नु त आफ्नो कुरा चाहिँ हामीसँगै गफ गरेर आइपुग्न रही 091-5-61-255 के लाइनमा आफ्नो कुरा हामीसँगै गफ गरे त फटाफट चाहिँ डायल गर 091-5-61-255 के लाइन एकदमै खुल्ला बा अरू कार्यक्रममा विकल से एकदम मतलब निर्धक्क हो के कार्यक्रममा गफ गरे आवेदिकनामा आफ्नो कन आर्जी गरम अनुरोध गरम और कार्यक्रममा सहभागी जनाएको चाहिँ अनुरोध कार्यक्रमका नाममा यहाँ प्रोग्राम जानकारी कतिबाट त जहाँ हुई बी 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन एकदमै खुल्ला बा फटाफट चाहिँ डायल गर्बी कनामा अर्जी गरम करिब करिब 1:45 बजेसम्म सघाइरहेको हामीले हरेक अथवार के सोमबार मंगलबार बुधबार और बिहीबार अपने हुकन के संगे थी और हमें चार दिन सम फरक फरक विषय वस्तु संगे संगे हमें अपने हुकन के संगे बार बार रही थी तो अपने हुकन चाहे हमार संगे आई कल से ऐतबार के दिन विशेष करके निशाना लगवाई थी जनौनी कह को तर आज चाहे हम नए लगवाई थी आज अपने हुकन के संगे हमें रमाइलो गप कर एक लगबाटी बातचीत बटो एक लगबाटी और बार बटो एक लग चाहे चहबी कल से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनेबी 091-5-61-255 के लाइन खुलाए अस्तिको सोम मंगलबार के दिन चाहे कार्यक्रम में चाहे गीत गाने इच्छा रहल रुचि रहल शौक रहल संगहरू के हमन चाहे कल करे पर्ना रहत और गीत गाएक लग चाहे एक पर्ना रहत अंताक्षरी खेले अस्तिको बुधवार के दिन चाहे अपन रोजल खोजल सोचल मन परल थारू भाषा के गीत सुनना रहत अस्तिको बिहार के दिन कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा चाहे सुनाएक पर्ना रहत कोई भी भाषा में कहके मैं आपको जानकारी करता हूं अभी दोपहर के समय 1 से करीब 1:45 बजे हमने यात्रा तो कार्यक्रममा सहभागी जनैते करबी कार्यक्रममा आइते करबी अपने पर हमार रमाइलो सहभागिता सँगै सँगै रमाइलो गफी कर्न मैं आपको जानकारी गर्न हम कहना चाहतु तो फटाफट चाहिँ डायल करते करबी कर्न जानकारी करती ठीक ठुकी जोड़ा गीत के पास समय एम चाहिँ डायल करते करबी 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन खुलाइबा

हजुर रितन मन सप्तहारे हो काहे कि तोमर ज्यान हो बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोली आफ्नो कार्यक्रम कार्यक्रममा बाटो नानेसेनका साथ धेरै बाबु रत्नापुरमा गरौ यो रेडियो टिका प्रेजेन्ट 101 मेगाहर्ज संघारी असोज महिना लागिल धान फुट्ना बेला पक्ना बेला महिना हो गिला हेरिन सरसरहुँ अपने हुँके अब सोच टिभी सायद कुछ कुछ धान त दसैँ से आगे नै काटर भी लागत मिन और ढिक्री खाइल कले से और दसैँ से पास से कुछ कट भी कुछ देवारी मान के फेन कटना रही लागत मिहिन और कहे कि तब त्यौहार आ गिल अब काम फेन सरसरहुँ के ओराई ठेरी क्या कर भी सबको जाने किसान दाल सबको जाने मिल के काम कर बटो काम करती मजा लगना बेला हो ये तो अब काम फेन हुईटी बा कह पड़ल धीरे धीरे चलती बा बस उस महीना से असोज अब कार्तिक मन तो त्यौहारे गिल बाहरी अपने कन पटे बा जस्त असोज के अंतिम अंतिम से लगभग 25 गते से पाछे लगभग असोज कार्तिक महीना के फेन वस्ती हुई ना बा कना जानकारी करते कोई टेलीफोन लाइन माल बाटे मैं बोल करना चाहम के उठे कहाँ से हजुर राम राम वहाँ कोई टेलीफोन लाइन में आयल रही सर लागत वहाँ जन संपर्क में नहीं हुई की लागल मिन अपने के हमन डायल चाहें करते कर भी 091-561-255 अर्थात 091-561-255 लाइन एकदम ही खुला बा का नाम टोकन जानकारी करती बटू तो चाहे डायल करते कर भी मई वहाँ कोई आई टी के में बोल करना चाहम की हुई थे कहाँ से संपर्क में आई टी जाई टी अस्थी हो कबू संपर्क में रथें कबू नहीं रथें अस्थी हो संपर्क में आई न मनाई के कबू कबू नेटवर्क के डिस्टर्ब के कारण कबू हमारे अपने टेक्निकली समस्या के कारण से फिर हमने अपने कन के संगे गफ नहीं करे सकती का नाम मैं आपको जानकारी करती बारू तो डायल करते कर भी 091-561-255 अर्थात 091-561-255 लाइन एकदम हमारे खुला के लिए बैठी फटाफट से ही डायल करी हमारे संगे गफ कार्यक्रम में सहभागी जनाएगा के नाम अर्जी करती बारू तो कार्यक्रम आईटी कर भी ठीक ठाक की जोड़ी गीत के पास समय नहीं बाटू डायल करते कर भी 091-561-255 लाइन खुलेगा

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आज कहा हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: लो इतनी छिटो आमा बना लागो तो सकि सब काम कर काम कर विदेश जानू के नगर्ने के जन्म पड़े जस्ते
4: जो राम पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेकल।
7: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिलबो मिलबो नि करत का कहीं ना हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहो रा घूम जाए ता था पाए।
8: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषत हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।

हजुर, व्यापारिक विश्रामको पास पुनः स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा बाटोमा मिशन मेकर साथ भेटे बाबु रत्नपुर मगर और यो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सँगैहरूकै आफ्नै सुन्नेबाटी कार्यक्रम हो निशान। तर आज हाम्रो आफ्नो कालसँगै गप करेकलाग चाहिँ बटिटो आफ्नो हामीसँगै गप करेकलाग कार्यक्रममा सहभागी जनाएको पर्न एकदमै जरुरी रहे। त फटाफट चाहिँ डायल गर्बी 091-5-61-255 अर्थात् 091-5-61-255 लाइन हाम्रो खुल्ला कार्यवाही कार्यक्रममा सहभागी जनाइदिए और हमारे रमाइलो गप कर भी का नाम जानकारी करती बाटो और हमार करल गप हमार मैगर श्रोता सुनाफ हमने तो डायल करते कर भी अब अठी बार एक ठाउर लम्बा व्यापारिक विश्राम के पास एक ठाउर गीत जोड़ा पट्टी हमारे अपने गीत के पास समय नहीं बाटो डायल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुला समय लाइन एन्जॉय करी रमाइलो गीत से

हजुर, बेलुका अलिकति पासा पुनः स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा बाटोमा मिसन निकै साथ दिँदै बाबुरत्न पूर्वमा गयो। यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz अस्तिको हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत सुनिसकेको थिए। इन्टरनेट के पहुँच रहल सङ्घारी हुङ्कुरे अपने ठाउँ से तपाईँको हामी कल गरेक पना रहत 091-5162-255 अर्थात 091-5612-55 लाइन एकदमै खुल्ला र फटाफट चाहिँ डायल गरी कार्यक्रममा सहभागी जनैबिका नै जानकारी कतिबाट सङ्घारी लब लब कार्यक्रमको निर्धारित समय डगर काटी लगाएर विदा मग्ना बेला हो किल्बा टाटा बाई बाई कहिले जाना बेला हो किल्बा उमा यात्रा रेडियो सुनको साथ दिएर आफ्नो धन्यवाद देम और टेकिङ वेटको साथ दिए बाबु रत्नपुरमा गरेपछि धन्यवाद देम मजा मजा गीत सङ्गीत सुना दिलेकमा मराबाज अपने ठन पुगा दे एकदम मजा के टेक के सपोर्ट कर के साथ दे हुए बाबू रत्नपुर वगैरह धन्यवाद देती अंतिम अक्षर रमाइलो गीत छोड़ी और कार्यक्रम में भेटना वाचा करती मैं मिशन आएगा जहां राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन अब केवल शुभ रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर भी।

0: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाली पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचालीका गहना पाइन्छन् रे।
1: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
0: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
1: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
0: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
1: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
2: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
1: सिर्जना सुन चाँदी पसल, बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नहीं निकल छु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
0: हार्दिक सुनचाली पसलमा छक्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चापकी, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। हार्दिक सुनचाँदी पसल, सरकारी अस्पतालको भित्री रोड, सञ्चालक शंकर साहू, सम्पर्क नम्बर 9848421974।
5: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको धारा जनानका लागि आवेदन दिने बारेको सूचना। टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वार्ड नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन यही मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुष 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धारा जडानका लागि आवेदन दिन हुन अनुरोध छ। याद राख्नुहोला, पुष 1 गतेपछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन। थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 0915614549 सम्पर्क गर्नुहोला। टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था।

0: फुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कबू झोले फटा का आज कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम तो
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: लक्ष्मी आभूषण भंडारमा छड़के तिलरी माइली तिलरी रामलीला झुमका पिजड़ा झुमका बाला औठी पेंडल चंद्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चांदी का गरगहनाहरू सुपथ मूल्य में बनाइन्छ एक पटक सेवा करने मौका अवश्य दिनुहोला। लक्ष्मी आभूषण भंडार सिद्धार्थ चौक चिकापुर कैलाली संचालक प्रकाश भंडारी संपर्क नंबर 98-48-53-61-95।
4: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछ छोरी
5: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
4: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
5: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
4: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
5: न्यू असम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
6: न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला अनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373
3: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न लाउन कस्तो रहर लाग्छ

कच्चे पान से मर लूटू। नागल आके कर जाने नई नकबान से मर लूटू। सीधा साधा मीकिन है प्रेम के रोग लगे लूटू।

सामुदायिक रेडियो टीका अपुर एफएम के संजेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर नकन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनो होकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफी सुन्टी रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से रानी जमरा कुलहरिया सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समिति के 28 वार्षिक साधारण सभा तथा 6 अधिवेशन शुरू जानकी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्टके विदाई जानकी गाउँपालिकाके दुर्गौली बजार अनुगमन सामान गुणस्तरीयता चेक जाँचके लागि अनुगमन कलक उपाध्यक्ष लालमती कठरियाके कहाई।

0: आप खोज खबर विस्तारमा जानकी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्टकी विधाई तथा फेरी भेटौला कार्यक्रम हुइल्बा जानकी गाउँपालिकाकै एक वर्षकी बसाई पाछ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्टकी फेरी भेटौला कार्यक्रम भानुभक्त भट्ट सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा सरवाहको गैलबाट फेरी भेटौला तथा विदाई कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट पालिकामा मजा काम कलक बटुटी उहाँ एक सफल मनै हुलक बटुलबाट अध्यक्ष चौधरी काम करबेर जहिया फे जनता केन्द्रमा धर्क काम गर्न आवश्यक रहलक बटुलबाट उपाध्यक्ष लालमती कठरिया पालिका मन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनप्रति प्रतिनिधि एक औरा जहन के परिपूरक हुईलक बतोईती आईना डीन मन सकुन के सहयोग सकुहना सहयोग कर आग्रह कलबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट पालिका से अपना मजा सिखाई हुईलक अपना सिखलक बात सिखाई पैलक हो काम करना सिलसिला में जनप्रतिनिधि और कर्मचारी के सहयोग पैलक बटुलाबाट टीकापुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्टोला स्थानीय तह मन काम कर पैना कलक अवसर और चुनौती दुनु हुईलक बटुलाबाट वहां कर्मचारी प्रचलित ऐन नियम अनुसार चलना करलक बटुटी पालिका के नेतृत्व कना पालिका हन कसिक आग बढ़ई नामन जनप्रतिनिधि के भारी भूमिका रहलक बटुलबाट वड़ा नम्बर नौ के वड़ाध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिका में मिलनसार लगनशील होकन काम करलक बटुटी नीति ओ विधि में रहकर काम करलक बटुलबाट कार्यक्रम में कार्यपालिका सदस्य पवित्रा विश्वकर्मा योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख हीरालाल चौधरी वड़ा सचिव के ओरसे वड़ा नम्बर एक के वड़ा सचिव ईश्वर जैसी प्रधान अध्यापक के उहर्से कालिका आधारभूत विद्यालय के प्रधान अध्यापक मथुरा प्रसाद न्यूपानी लगायत बोल रह कार्यक्रम संचालन प्रशासन प्रमुख मीनराज कठरिया कर रह जानकी गाउँपालिका मन बजार अनुगमन कैगिल्बा पालिका फिटर मन संचालन रहलक पसल से बिक्री वितरण करना सामान के गुणस्तरीयता चेक जांच करना उद्देश्य लेकर बजार अनुगमन करगिलक हो दुर्गौली बजार अनुगमन में पसल दर्ता हुईल नई हुईल नवीकरण हुईल नई हुईल सामान के मूल्य सूची हुईलक नई हुईलक सामान के मैट ओरैलक नई ओरैलक लगायत के अनुगमन कैगिल्बा अनुगमन में दुर्गौली बजार में रहलक किराना पसल होटल वर्षशाला लगायत के पसल के अनुगमन करगिलक हो अनुगमन के क्रम उपाध्यक्ष लालमती कठरिया पसल मन डर रेट मूल्य सूची कौनो पसल में हुईलक कौनो पसल में नी हुईलक ओहरसे ऐना दिन में पसल संचालक डर रेट मूल्य सूची राख सरसफाई मन ध्यान दिहे लगायत के लगायतकै सल्लाह सुझाव देलबाट पशु सेवा शाखा प्रमुख सन्तोष मल्लिक मासु कटना पटशालामा सरसफाई निहुलक डेगिलक उहर्से सरसफाईमा ध्यान दिए आग्रह गर्लबाट योजना तथा अनुगमन शाखाकै सन्दीप साउट पसल संचालन करबेर स्थानीय तहमा फेर दर्ता गर्न आवश्यक रहलक उहर्से दर्ता गर्क कलक संचालन गर सुझाव देलबाट व्यापारी परमिला चौधरी पालिकासे अनुगमन कलक मजा करलक आपन हुकन सचेत करैलक बटुलबाट और व्यापारी पसल अनुगमन बजार चोक चौराहामा कलक नही गाउँके भित्तर फे करपना वर्षके एक चोकल नही नियमित रूपमा अनुगमन करपना बटुलबाट अनुगमनमा जनप्रतिनिधि कार्यपालिका के सदस्य लक्ष्मी चौधरी पार्वती चौधरी योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख हीरालाल चौधरी स्थानीय बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चन्द्रभान बम स्वास्थ्य शाखा के शोभा चौधरी कृषि शाखा के ममता राणा कर्मचारी दिलबहादुर चौधरी प्रहरी पत्रकार लगायत के उपस्थिति रह अनुगमन के काम ऐना दिन हन निरन्तरता देह परना मन जोर दे गिलबा खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423059। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
5: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
6: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
7: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
8: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
8: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
7: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
8: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। रानी जमरा कुलहरिया सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समितिके 28 वार्षिक साधारण तथा 6 अधिवेशन टिकापुरमा हुइलबा। मूलकुला समितिकी अध्यक्ष कुमार राज शाहीकी अध्यक्षतामा हुइल कार्यक्रममा पूर्व सांसद लालवीर चौधरी प्रमुख अतिथि रहलह। कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै पूर्व सांसद चौधरी सिंचाई आयोजना बनाई दिनरात खटलक मनिन्हन वीरस नैविना बटुलबाट वहाँ आयोजना सञ्चालन गर्न आग सम्झौता करबेर कम्तीमा 4 हेक्टर जमीनसम्म पानी वितरण प्रणाली बनेना सम्झौता गर्ल खुइल सेफे ऊ बननी सेक्लक बटुलबाट वहाँ आफ्ना लम्मा समय कुला समितिमा बिताइलक। ऐना दिनमा फे किसान सिंचाई विस्तार आयोजना सञ्चालन लगायत के बातमन सहयोगी के भूमिकामा रहना बटुलबाट आयोजना के आयोजना निर्देशक प्रेमराज घिमिरे कोविड महामारी व 2072 के भूकम्पछि आयोजना के कुछ काममा ढिलाइ हुइलक बटुलबाट वहाँ निरन्तर कुला समिति किसान के सरसल्लाह अनुसार विकास निर्माण हो सिंचाई सुविधा विस्तार जसिन काम सञ्चालन कर्ती जैना बटुलबाट वहाँ अन्य जिल्लाकै सिंचाई उपभोक्ता हुक्रफे याकर यहाँ के उपभोक्ता समिति के काम के अनुगमन करना व सिक्क जैना हुइलक उहरसे यहाँ मजा काम हुइलक बटुलबाट सिंचाई आयोजना कृषि उहरके प्रमुख भरत कडेल अब आयोजना के क्षेत्र विस्तार हुइलक बटुटी यह वर्ष किसान छनौटके कृषि कार्यक्रम के सम्झौता हुइटी रलक बटुलबाट वहाँ खाद्यान्न बाली के बिउ उत्पादन चैते धान आलू खेती तरकारी तथा विभिन्न उत्पादन लगायत के काममा आग बहती रलक बटुटी कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य फे 95% करेलक मोहरसे यह मंगसिर से संचालन में ऐना तैयारी हुई तिरलक बटुला राष्ट्रीय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष गुणदेव फन्ट किसान सहज पानी पैना व्यवस्था करकुश सुधार आवश्यक रहलक बटुईटी हाइड्रो पावर सिंचाई सुविधा अलग अलग कराईपना बटुलाबाट रानी कुलाके अध्यक्ष वीरबहादुर खत्री किसान सूचना पाई कठिन हुईलक बटुईटी कसिकन आग बहना व समय में किसान सम सूचना कसिक पुगैना कना बारे मन एकचोट छलफल कर आवश्यक रहलक बटुलाबाट कुलहरिया कुला अन्तर्गत के कुला के अध्यक्ष पुष्पराज जोशी किसान खोजलक बेला खेतसम्म पानी पुगाई निसेकलक बटुटी कुला बन्टीरलक ठाउँमा अनुगमन करपना बटुलाबाट रानी कुला अन्तर्गत के शाहीपुर कुला के अध्यक्ष धर्मराज जैसी आयोजना के काम धुर आधार रहलक उहरसे सिंचाई सुविधा किसान पाइनी सेकलक समय में सूचना निपाईबेर किसान दुख झेलती रहलक उहरसे यहां व्यवस्थापन करपना व बारह महीना पानी के सुविधा हुई पर्ना बटुलाबाट कार्यक्रम में कोषा अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर साउ 93,35,410 रूपया बराबर के आय व्यय प्रस्तुत करलबाट कर लरल उपाध्यक्ष कीर्ति बहादुर रोकाइसे स्वागत करल हुईल कार्यक्रम संचालन सचिव परशुराम महतो कर लरल साधारण सभा मूल कुला समिति के लौव नेतृत्व चयन करियाबा कैलालीके टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 नारायणपुरमा संचालित गणेश उत्सव समापन कैगिलबा भदौ 30 गते से शुरू कैगिल गणेश उत्सव असोज 5 गते समापन करगिलक आयोजक जनैलबा गणेश उत्सव समिति नारायणपुरके आयोजना 6 नम्बर वडा कार्यालय लक्ष्मी नारायण बहुद्देशीय सहकारी संस्थाके प्रयोजन तथा धर्मराज शाहीके विशेष सहयोग मन गणेश उत्सव संचालन करगिल रह गणेश उत्सव समितिके संयोजक उपेन्द्र खड्का यही वर्ष देशमन भारे घटना हुईल कारण सामान्य करना योजना रहलक हुईल से फे सकुन के सहयोग लेकर विगत के वर्ष से ई वर्ष कार्यक्रम आमी मजा हुईलक मन खुशी व्यक्त करलबाट 7 दिन समय संचालन हुईर गणेश उत्सव मन बिहान भजन कीर्तन योग तथा संध्याकन भजन मण्डली व भजन सम्बन्धी नृत्य कर्खन कार्यक्रम कैगिल रह गणेश उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष युवराज नायक गणेश उत्सव सफल पार सहयोग करियन हन धन्यवाद देती ऐना दिन मफे सहयोग के अपेक्षा रहलक बटुलाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश के निर्माण व्यवसाय भुक्तिएल कानूनी प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्या यहां तत्काल सम्बोधन करना उद्देश्य लेकर सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसाय महासंघ कानूनी तथा प्राविधिक परामर्श शाखा संचालन में लनलबा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ नीति अनुसार स्थापना करगिलक उ शाखा में व्यवसाय कानूनी परामर्श के लिए अधिवक्ता सिद्धराज ओझा तथा प्राविधिक विषय में परामर्श के लिए इंजीनियर होम बहादुर तामाङ कार्यरत रहियाबाट शाखा के उद्घाटन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ के उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर सेठी करलखुट उद्घाटन कार्यक्रम में बोल्टी उपाध्यक्ष सेठी राष्ट्रीय अर्थतंत्र व पूर्वाधार विकास मन निर्माण व्यवसाय के भारे भूमिका रहलक बटुलाबाट पाचक समय निर्माण व्यवसाय विभिन्न कानूनी झंझट नीतिगत अस्पष्टता ठेक्का समझौता सम्बन्धी समस्या तथा प्राविधिक जटिलता सामना कर पर्टिरलक उल्लेख करती वहां लौ शाखा से असीम समस्या के समाधान मन महत्वपूर्ण भूमिका खेलना बटुलाबाट वहां के अनुसार शाखा व्यवसाय कानूनी विवाद ठेक्का समझौता से सम्बन्धित प्राविधिक समस्या तथा प्रशासनिक प्रक्रिया देखजिना जटिलता के विषय में आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने बा उपाध्यक्ष सेठी व्यवसाय के हित मन शुरू करगिलक लौ सेवा के पूर्ण सदुपयोग कर देशभर के निर्माण व्यवसाय आग्रह कलबाट खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पा छैनिनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
9: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
10: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने नआउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
11: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
10: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार।
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 63 77 72।
13: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्यालढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
14: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्यालढोका बनाउनुहोस् न।
13: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्यालढोका?
14: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
13: अब त म ढुक्क।
15: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
14: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत। त्रिनगर गौरी फन्टा नाकामा भारत से मालवाहक बोकन्ने नेपाल प्रवेश गर्लक गाड़ी सशस्त्र प्रहरी के ब्यारेल मन ठक्कर देवेर ब्यारेल टुटलबा। आइतबार रातका भारत से सामान लिएका नेपाल प्रवेश कर्ती गर्लक मालवाहक गाड़ी नाकामा धैगिलक ब्यारेल मन ठक्कर देलक हो। अन्य गाड़ी के तुलनामा ऊ गाड़ी के आकार ब्यारेल से भारे हुईलक वहांसे कुछ भाग ठोक्काकन ब्यारेल मन छेटी पुग्लक। त्रिनगर स्थित सशस्त्र प्रहरी गण जनैलबा भारत से नेपाल भित्रैना मालवाहक सवारी साधन रात के समयमा प्रवेश गर्ना क्रममा हुइलक सामान्य त्रुटि के कारण ब्यारेलमा ठक्कर लगलक। सशस्त्र प्रहरी जनैलबा घटनामा मानवीय व अन्य क्षति हुइलनि हो। ठक्कर से टुटगिलक ब्यारेल के सोमबार मर्मत कार्य करना सशस्त्र प्रहरी से जनागिलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेतृत्व कर्तिरलक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा आसाम संसदीय दल के बैठक बोलैलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा नेकपा संसदीय दल के नेता खगराज भट्ट दिन के 3 बजे संसदीय दल के बैठक बोलैलक। फिट आपना दल भीतर असन्तुष्टि हो विवाद देखिलक बेला मुख्यमंत्री भट्ट बजेट निर्माण तथा सरकार संचालन के विषय में छलफल कर दल के बैठक बोलैलक। फिट आगक सरकार नलक बजेट पारित निहुलपा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सावन थेसे बजेट विहीन अवस्था में बा। मुख्यमंत्री भट्ट असोज 15 गते भीतर चालू आर्थिक वर्ष के बजेट लन्ना तैयारी करती रह तैयारी के बीच नेकपा संसदीय दल के बैठक बैठलगलक हो। मुख्यमंत्री भट्ट यी से आग भडौ मसान्त भित्तर बजेट लन्ना बटुइल रह तर राजनीतिक विषय मिलाई समय लग्ना हुईलक वहांसे बजेट लाना ढिलाई हुईलक उहां के कहाइबा। आप असोस दोस्रो साता भित्तर बजेट लन्ना तैयारी हुई तिरलक उहां बटुइलबाट उही से फिर ढिलाई करना अवस्था नि हो मुख्यमंत्री भट्ट कल। उहां के अनुसार आर्थिक मामिला मंत्रालय बजेट निर्माण के लागि मार्गदर्शन सम्बन्धी मंत्रालय हुकन पठासेकलबा। संसद हुकन संग के योजना सिफारिश मंगना तैयारी हुईलबा कल से 9 गतेसम्म मंत्रालय से फे योजना मंगना सरकार के तैयारी रहलबा। यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। रानी जमरा कुलहरिया सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समिति के 28 वार्षिक साधारण सभा तथा 6 अधिवेशन शुरू। जानकी गाउँपालिका मन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट के विदाई। जानकी गाउँपालिका के दुर्गौली बजार अनुगमन सामान गुणस्तरता चेक जाँच कर अनुगमन कर उपाध्यक्ष लालमती कठरिया के कहाई। ओ सुदूरपश्चिम के विकास निर्माण व्यवसायन आप कानूनी तथा प्राविधिक परामर्श। लिता बक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्र औरत समाचार छ बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सिक्बे अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देतीमै गीताफे बिदा हुटु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम
16: पैसा तथा पर्स भेटिएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर एक जमरा पारी मेन्थादेखि समितिपुर जाने बाटोमा मेरीगोल्ड स्कूलको बसमा विद्यार्थी पुर्याउन जाने क्रममा केही दिन अघि बेलुका 4 बजेतिर कालो पर्स औषधि र केही पैसा भेटिएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले लोकबहादुर सारू मगरको मोबाइल नम्बर 97 44 28 72 वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा सम्पर्क गरी बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ। पैसा दावी गर्ने व्यक्तिले पर्समा रहेको जम्मा रकम भन्न सक्नु पर्नेछ।
17: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
8: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार्ट पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
17: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 98 68 55 10 00।
14: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
18: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
14: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
19: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
18: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।

0: लक्ष्मी चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइन का गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: आरएन लक्ष्मी चाँदी पसल बलभद्र चोक टीकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमरा सुनार सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।
2: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
3: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कहीं हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना कटरा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना ओट्र फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
4: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
5: कागजात हराएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कमला सुडारीको पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कशीट लगायतका कागजातहरू शुक्रबार दिउँसो 12 बजेतिर टीकापुर खडकचोकदेखि जमरा पारी पेट्रोल पम्पसम्म जाने क्रममा बाटोमा हराएकाले पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नम्बर वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क नम्बरहरू 97-64-26-70-90 र 98-15-60-67-05।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के उस्ता पाटिन गटीलो ठाउँ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर नगरपालिका को सूचना नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं।
4: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं।
3: यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौ।
4: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि यथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गरौं। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
5: पैसा तथा पर्स भेटिएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 जम्बरा पारी मेन्थादेखि समितिपुर जाने बाटोमा मेरीगोल्ड स्कूलको बसमा विद्यार्थी पुर्याउन जाने क्रममा केही दिन अघि बेलुका 4 बजेतिर कालो पर्स औषधि र केही पैसा भेटिएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले लोकबहादुर सारु मगरको मोबाइल नम्बर 97-44-28-72 वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा सम्पर्क गरी बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ। पैसा दावी गर्ने व्यक्तिले पर्समा रहेको जम्मा रकम भन्न सक्नु
6: दलित के हो
1: कसैको घरमा जन्मेर ब्राह्मण हुँदैन कसैको घरमा जन्मेर शूद्र हुँदैन
6: के दलित मानव होइन र के प्रयास हुँदैछन् विभेद न्यूनीकरण गर्न
7: सुदूरपश्चिमका आम दलित समुदायहरूको पहिचानको कुरालाई मैले खोजी गर्दैछु
6: गाउँदेखि सहरसम्म स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म हरेक तह र तबकासम्म पुग्छौ हामी आवाज विहीनहरूको आवाज बन्छौ हामी विभेदका विरुद्ध हाम्रो सानो प्रयास कार्यक्रम समानताका स्वरहरू तपाईँकै घर छेउको रेडियोमा सुन्न नभुल्नुहोला साताको सोमबार राति 8:05 बजे
8: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान।
1: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 98 68 80 00 08 र 98 25 63 77 72।
4: कामदार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।
1: काठमाडौँ स्थित घरेलु कामदारका लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोकका लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
4: कार्यस्थल काठमाडौँ तथा सिन्धुपाल्चोक, आवश्यक संख्या पुरुष एकजना, महिला एकजना तथा अन्य एकजना। सम्पर्क फोन नम्बर 98541 00 725। इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
5: कार्यक्रम छोट मिट साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
6: जब देखनो तुहिन हे,
5: यदि मन परत हुई कले से अपन मन सुनेना चाहती कले से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कले से हमारे वो गीत अपने पक्के सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-5162-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।